असल कलाकार मंगलूर, प्रस्तुत करतात कोंगणी सामाजिक नाटक बोंगो, बरोपी नेल्लू पेरमानूर, पात्र परिचय विल्सन डिसोजा कुलशेखर, फेलिक्स लसरादो पेरमानूर, ऑलविन वेगस, राजेश मिया पदव नेल्लू पेरमानूर, अनु बिजय, ब्लेजी मोंतेरो, शॉन रोड्रिगस, कैनी डिसोजा, डिंपल पिंटो, दिव्या डिसोजा, सेलिन डिसोजा, संगीत सतीश सुरतकल, पोदा वनिल वेगस, फोटोग्राफी अनु बिजय। तर बोंगो नाटक असो पहिलं वंटो आईच्या प्रसारात ऐकूया।

0: जालेंगी फ्लाइट लैंड जालेंगी
1: फ्लाइट लैंड जाले
0: वाय रही ना सा ते दुपाचा रुका लागी पाए सही सा पिता रह लागे होएगी
1: ना नहीं समा सोरो गुट्टू नु आज दौड़े भाई रह ला दिकू नु अगर ते पाए पिता रह ला भाई दिस्ता
0: यानो मुनर बियालर मागेर पाए पिता रह ला भाई दिसा ना एलीना
2: हाँ तो मुझे केलकुलन करता मगर न्याय जाई आऊं कोर्ट आगे तो
0: रे निट्टा रे आऊं लेता राव तू इना सा पाले आऊं वो विषय पुरतु रंगा रिपीट जाऊं मुझे देखूं ना मैं इसार्चे सीधा इसार्चे मगर समय बट्टे एक जाप दी जाती है पाये सही सा बितर रह लांगे करेक्ट संगा
1: ना मैं नहीं समा पाये बदर रहो ना कौन-कौन दिक्के भरा मोज़ मुझे आवतर निश्चित चकर मोसला आज ये दौड़ लगा था
0: भरा मोसु सिवाड़ों ने कौन आएगी जाए ना ये लेना आई कल है रे देखो नहीं इतना बड़ा करी जाए तुम्हें
2: नॉट दिस पॉइंट योर ना हाँ पाये समास
0: समास
2: असल
0: डाले ने
1: मुक्दाले ने
0: मुक्दाले
2: अनेक विषय
0: पर तुम कहाँ ले रहे तुझे
2: दौर बंता बंदी
0: हाँ
2: दौर बंता ना मुदे मका एक तीन फीट वाटर सोड़ूंगी
0: वाट
2: गरज पड़ी पर दौर को तुझे मोड़े कन्यों ने पुरुषों ही उनको कुंडी तैयार ना शॉर्टकट वाट ही वाट सोट
0: बोले लिंगा वाट सोड़े लापा ये आट्टे नहीं होने ताई चार मणि गाठी आई था ने थी रूम निदाना वाली चलीसी गाड़ी पाटी ता कट्टे नहीं ता
1: हाँ दी ना
0: और ये रे बस
2: लारी की बस मागे संता पहले लंगी बंता
0: लंगी ले सारे लुंगी लुंगी वो सुन कर

0: வருது. நீண்ட நிசா, தூ என் புத்தான் காதார் கடும் கடலை பூனும் தஞ்சி பயிலா ஏக்கமேக்க தாக்கடமாக்கி முன்ச்சே அவே நெய் சமாச்சி துன்பட நிசா தூ எக் தாத்லோ மனிஸ்மோ
1: தாத்தும் சீத்துல போலவுச்சே காலாசா சைபின் தாத்லோ மனிஸ் துஸ்குகாகிதே துபாவுகி आज
2: सकाळी
3: उडासण
1: बांध उडासण
3: गुळयो कान घे टायमार
4: ऑर्डर
5: करची गरज ना हमें ड्रेस स्टिचिंग करूंक दिला आणि मका आडूंक आसा संजय करेक्ट 5 वरां भितर पावलय बचाव नंतर वॉल आणि उशा कुडातन बाहेर पडा
1: मा म्हाका नाव गुणू जाता पयले निवणी सारले हांवें आतां तापयता सदां सकाळचे म्हाका नाव गुणू दादा हांवें गोतू ना गे तुका
5: तूं काल राती येन आदलो पळयलो
1: ए हांव काल राती मात्र न्हय फाल्यां येना पोरवा येना आनी मुखार येवं कशी येना ये सारूं को तूं कोण तुजे कितें घेता तुजे कितें घेता ये म्हजे बायल म्हजे घर म्हजी कथा तुजे बायल तुजे घर तुजे कुटुंब ये तुजे तकलेन आसले तर आज एका मनशा बरी आसतो राक्षा बरी वाडटो न्हय तुजे कितें आता तुजे कितें आता कोणाय लागी उलयतना मदेर उलोवंक तुका अधिकार ना म्हाका अधिकार ना म्हाका अधिकार ना तुका जबी म्हाका अधिकार आसलो कित्याक म्हळ्यार रेस्पेरा समेत काजार जाल्या उपरांत हांवें तुका जप दिलो आनी जप दिव येदो व्हड करूंक म्हाका अधिकार आसलो कित्याक जबाबदार असो काटो म्हज्या काळजाक दपतलो पूण आज आज तूं वाट चुकोन उपरांत पावलां काडटना मात्र म्हाका अधिकार ना जाव बरें जावं दत्त पळयतलो तुका उलयल्या तक्षण सुरू जालो हांगा रडसो नाटक छे ए आनी तूं 5 मिनटांनी म्हाका नाव उदारता पयलें वाचव कळ्ळें मग तुका